के सेकंड एपिसोड ऑफ स्कैम अलर्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली बार का एपिसोड अगर सुना हो तो आपने ये जाना होगा कि कितनी तरह के स्कैम हैं दुनिया में, और ये स्कैम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से आपके पास आते हैं। कभी आपके मोबाइल फोन के जरिए, कभी आपके ईमेल के जरिए, कभी इंसान आपके पास डायरेक्टली भी पहुंच जाता है और आपको स्कैम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें, अपनी गैजेट्स को और अपने जो इंफॉर्मेशन लेवल है उसको एट पार रखें जो आसपास हो रहा है। और कोई भी चीज अगर आपको टू गुड टू बी ट्रू लगती है तो वो शायद टू गुड टू बी ट्रू है और आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। बहरहाल आज का भी एपिसोड मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसके अंदर भी कुछ मैं स्कैम के बारे में बातें बताऊंगा आपको, जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेगी स्कैम को आइडेंटिफाई करने में। और बहुत सारे गाने जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं एसीडी देसी के एपिसोड में, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये वीकेंड एपिसोड है और इसके अंदर फन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन और न्यूज और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें होती रहनी चाहिए, बिकॉज यू लुक फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड। तो आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीडी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, गेम शो।

आप सुन रहे हैं, गाने भी आप इंजॉय करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज टाइम आउट लीजिए और पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने ना बैठे, मोबाइल के साथ ना खेले। ये चीजें मैं आपको जब बोलता हूँ तो मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि डिवाइसेस से थोड़ा दूर रहूं, लेकिन क्योंकि मेरा काम बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू ही होता है, ऑनलाइन गैजेट्स के जरिए, मोबाइल फोन या लैपटॉप, तो जब मैं आपको ये चीजें बोलता हूं तो मैं एक्चुअली अपने आप को भी ये चीजें बोल रहा हूं, ताकि मैं खुद भी ये फॉलो कर पाऊं। तो चलिए आगे का एपिसोड हम जारी रखते हैं और जानते हैं कुछ स्कैम्स के बारे में जो होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे साथ नहीं तो किसी के साथ, लेकिन हम सबको उसके बारे में जानना और पता होना बहुत जरूरी है। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी का स्कैम अलर्ट पार्ट टू ऑन एसीटी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल।

ऑन अ बेसिक लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दिस इज थ्रू दी ACCC स्कैम वॉच वेबसाइट, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम है उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं जो कि बहुत सारी हैं और एवर इंक्रीजिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं, बट कुछ जो बेसिक टाइटल्स हैं, जो बेसिक यू नो सेगमेंट्स हैं स्कैम्स के, वो क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह से गेन की जाए, और उसके लिए आपका MyGov से या सेंट्रल लिंक से मैसेज आएंगे जो एक्चुअली नहीं होते. अटेम्प्ट टू गेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ टैग होते हैं, तो जो स्कैम्स होते हैं वो स्पेशली फोकस होते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए. इसके अलावा जो बहुत सारे और स्कैम्स होते हैं वो होते हैं बाइंग और सेलिंग, डेटिंग एंड रोमांस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में मैं बात करूंगा ACT देसी के एपिसोड के ऊपर. फेक चैरिटीज, यू नो ऑस्ट्रेलिया में चैरिटी इज अ सेक्टर विच इज बूमिंग एक्चुअली, एंड इट इज, मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था जिसमें बताया था कि 4% पर ईयर एंड देर आर 56,000 चैरिटीज इन ऑस्ट्रेलिया ग्रोइंग एट 4% एनुअली. तो चैरिटीज स्कैम भी होते हैं कि आपको यू नो गो फंड मी या बहुत सारे और ऐसे पोर्टल्स जहां पे फंड कलेक्ट होते हैं उसके फेक लिंक होते हैं और आप वहां पे जाके मनी डोनेट करते हैं यू नो इन ऑल गुडविल जेस्चर, बट वो वहां तक पहुंचता नहीं है. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जिसके बारे में मैंने बात किया आपको, क्रिप्टो करेंसी हो गया या बहुत सारी और पॉन्जी स्कीम्स, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट की आपको टू गुड टू बी ट्रू जॉब होगी कि घर में बैठ के काम कर रहे हैं पैसा फुल मिल रहा है आपको, थ्रेट्स एंड एक्सटॉर्शन जैसे कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास एक्सेसिबल है, कुछ वीडियो कुछ कॉन्टेंट जो आप नहीं चाहते कि लोगों के पास पहुंचे और उसकी वजह से आपको थ्रेट्स हो रहे हैं और आपको मनी पे करने के लिए फोर्स किया जा रहा है. इसी तरह से और स्कैम्स है जैसे अनएक्सपेक्टेड मनी की, एक मुझे याद आता है कि बहुत इनफेमस होता था कि आपको ईमेल आते हैं अफ्रीकन कंट्री या किसी और स्मॉलर कंट्री से जिसमें बोला जाता है कि यू नो आप इनहेरिट किया है आपने बहुत सारा मनी और अगर आपको वो मनी चाहिए तो आपको कुछ पैसा अपफ्रंट पे करना पड़ेगा. अभी भी वो सोचता हूं मैं उसके बारे में तो मुझे हंसी आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये सच है और वो एक्चुअली में शिकार होते हैं इस स्कैम का. तो प्लीज बी अवेयर, अगर ऐसे कुछ आता है तो कॉशियस रहे, ऐसा कुछ नहीं है. और अनएक्सपेक्टेड विनिंग की आपने लॉटरी जीती है और अगर आपको लॉटरी को एक्सेस करना है तो एडमिन फीस या ऐसे ही कुछ फीस देनी पड़ेगी ताकि आपको $1 million मिले आपके बैंक अकाउंट में. बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा लेकिन स्कैमर्स नहीं थकते, तो आपको भी नहीं थकना है और आपको इन्फॉर्मेशन गेन करते रहना है एंड यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दी स्कैम्स. चलिए एक और गाना सुनते हैं और मैं आपके पास वापस आता हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है ACT देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 people.

तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने कैटेगरीज ऑफ स्कैम्स के बारे में बात की और मैंने कुछ ब्रीफली आपके साथ शेयर किया कि उन कैटेगरीज में किस तरह के स्कैम होते हैं. बट इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने सेव कर रखी है, अगर आपने अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज किया है, अगर आप यू नो अपडेट रखते हैं अपनी डिटेल्स को अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और ड्यूअल मेथड ऑफ लॉगिन जैसे कि आपको SMS या OTP आए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर प्रोटेक्टेड. बट नॉट 100%, but there are probabilities that you will be less likely to get scammed. So information is power and you should keep having and updating your information. तो एक स्कैम जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और आज से नहीं जब से आई थिंक दुनिया चल रही है ये स्कैम होता रहता है डिफरेंट वे में. आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और ज्यादा इसको पावर मिल गई है क्योंकि बहुत सारे पोर्टल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ यू नो सोशल मीडिया एंड प्रोफाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दोज. आजकल हम इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन कौन देख रहा है? तो जिस स्कैम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है डेटिंग एंड रोमांस स्कैम. इसमें क्या होता है कि स्कैमर एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ पीपल एंड यू नो थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू एप्स एंड यू नो प्ले इमोशनल ट्रिगर्स टू गेट यू टू प्रोवाइड मनी, गिफ्ट्स और पर्सनल डिटेल्स. और जैसे मैं बोलता आया हूँ कि स्कैमिंग मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है कि अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स के पास पहुंच गई है किस तरह से. और सोशल मीडिया पे हम जैसे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, हम कहाँ विजिट कर रहे हैं, हम चेक इन करते हैं, यू नो फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज डालते हैं, एंड ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर एक्चुअली यू नो टैग टू दीस समहाउ. सो आई वुड रैदर यू नो लेट यू नो एंड टेल यू दैट बी अवेयर व्हिच इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड ऑन योर सोशल मीडिया पोर्टल. तो जितना कोशिश करें इंफॉर्मेशन को कम से कम डालें और स्कैम से बचें. और अगर आप स्कैम में फंस जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज अथॉरिटी एंड यू शुड क्विकली गेट इन टच विद द बैंकिंग अथॉरिटी और द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी. बहरहाल जो मैं डेटिंग और रोमांस स्कैम की बात कर रहा था आपके साथ वो ये होता है कि उसमें क्या होता है कि आपको कोई आपके यू नो डिफरेंट डेटिंग पोर्टल्स पे कोई मिलेगा. आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी, और इनफैक्ट मुझे भी इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर मैं अपडेट डालता हूं तो मुझे भी कुछ अननोन पीपल से यू नो मैसेज आते हैं कि आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल सकते हैं, या क्रिप्टो करेंसी है, या यू नो एंड ऑल दोज अकाउंट्स. आई मस्ट टेल यू दैट दे हैव यू नो ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ फीमेल्स, यू नो समटाइम्स रिवीलिंग एज वेल, जिसमें आपको एंटाइज किया जाता है ताकि आप उनसे बात करें और फिर आप किस तरह से उस चक्कर में फंस जाएं. लेकिन उसमें ये होता है कि आपको कन्विंस किया जाता है कि आप इन्वेस्ट करें किसी क्रिप्टो करेंसी में या बॉन्ड स्कैम्स में. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्कैम होता है प्रीडोमिनेटली एंड राइटली सो इम्पैक्ट द यंगर पीपल हु माइट बी सीइंग दीज एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू सोशल मीडिया, रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड यू नो ऑल दोस kind of things. But remember never to take an investment advice, send money or give your credit card details, online account details, personal information. No, never. You should never. I mean, अगर आपको investment करने का शौक है और आप करते हैं तो I would suggest कि आप किसी qualified financial advisor से बात करें before you make any investment. So there's a website called Money Smart run by Australian Securities and Investments Commission ASIC, and that has information on different types of investment and how to spot investment scams. So agar aap find out karna chahte hain more to please visit Money Smart website. तो इसी के साथ मैं एक और सॉन्ग लेके आया हूं आपके लिए एसटीटी देसी पे. एंजॉय कीजिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बिकॉज टेंशन लेने से किसी का भला नहीं हुआ. इन्फॉर्मेशन लीजिए, अब्सॉर्ब कीजिए और बाकी सब भूल जाइए. वीकेंड है, एंजॉय कीजिए.

ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे डेटिंग एंड रोमांस स्कैम एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कैम जिसमें यू नो पीपल गेट इमोशनली ट्रिगर्ड एंड दे प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसके बाद वो बाद में पछताते हैं या इन्वेस्टमेंट ऐसी कर देते हैं जो उनको सोशल मीडिया के थ्रू एडवाइस मिलती है और वो ऑब्वियसली most of the times I think 99.9% of the times bogus hoti hai aur people lose their money get into grief and you know it's a cycle in which people feel left out and obviously aajkal ke time mein to these things play even more so please gather some information before you make any kind of decision to put some kind of investment money from your hard earned bank account रिसेंटली मेरे मोबाइल फोन पे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें बोला जाता है कि योर डिलीवरी इज पेंडिंग और यू कैन ट्रैक योर डिलीवरी फ्रॉम हियर और यू कैन मैनेज योर डिलीवरी यू हैव मेड दिस ऑर्डर एमेजॉन DHL और यू नो ऐसे ऐसे नाम से आता है जो आपको लगता है कि आपने तो कुछ ऐसा यू नो कुरियर मंगवाया नहीं या कहीं से आया नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये क्या है सो यू गेट टेम्प्टेड यू नो टू go to that link and that's the worst thing that you could do any unsolicited message jo aapke paas aata hai jisme link hote hain jo aapko pata nahi hai ki valid source se aa rahe hain wo number unknown hai to never jitni marzi baar main bolu wo kam hoga touch those links because aap apni information ko immediately give away kar denge and that is something that you will regret later. So, जिस स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहा जाता है फ्लू बॉट स्कैम सिंस ऑगस्ट 2021 मेनी ऑस्ट्रेलियंस हैव बीन गेटिंग स्कैम टेक्स्ट मैसेजेस वॉइस मेल्स एंड डिलीवरीज की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जैसे मैंने बताया कि आपका फलाना डिलीवरी पेंडिंग है यू कैन ट्रैक एंड स्कैम वॉच जो वेबसाइट जिसके बारे में मैंने बताया ACCC की वेबसाइट उसके अंदर उनको 9500 रिपोर्ट्स ऑफ दी स्कैम्स have been reported to them since the beginning of 2021. The text message asks you to tap on the link as jaise maine bataya or download an app to track the delivery and bas agar aapne wo kiya to aap you know नॉर्मल सेंस में तो अगर आप कोलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं तो आप बस गए काम से लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इमीडिएटली जैसे ही आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो प्लीज इमीडिएटली उसको डिलीट कर दीजिए किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स आपके सिस्टर ब्रदर्स जो टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं है आपके रिलेटिव या नेबर्स कोई भी आप प्लीज ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्री में गिफ्ट भेज रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है ऐसा कुछ नहीं है स्कैमर्स आपको स्कैम करने के लिए तैयार हैं तो डोंट बी दैट प्रे दैट स्कैमर्स आर प्रेइंग ऑन और इसी के साथ एक और गाना हम सुनते हैं ACT देसी पे और मैं आपके पास आऊंगा कुछ टिप्स के साथ जो आपको सेफ रखने में आपकी मदद करेंगी कहीं जाइएगा नहीं मैं बस यूं गया और यूं आया

आज के एसीडी देसी के एपिसोड पे हमने जाना कि किस तरह के और कितने टाइप ऑफ स्कैम्स हो रहे हैं हमारे इन एंड अराउंड और कुछ लोग शिकार भी होते हैं। ये एक और बात है कि बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ यू नो स्टिग्मा एंड यू नो पीपल माइट थिंक दैट दे आर डम एंड दैट्स द रीजन व्हाई स्कैमर्स गेट मोर पावर एंड दे कीप स्कैमिंग पीपल। तो अगर आप स्कैम हो गए हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन हु कैन आउटस्मार्ट यू। आई मीन मैं नहीं कहता कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इनफैक्ट मुझे भी कई बार ऐसा हुआ है और मैंने अपनी लर्निंग्स ली है उन एपिसोड्स के बाद जो ऐसी चीजें होती हैं। तो सिमिलरली अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डोंट फील शाय और फील अशेम्ड ऑफ शेयरिंग दोज इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग दोज एक्सपीरियंस विद समवन। आप शायद किसी की हेल्प कर पाए और एक स्कैम होने से रोक पाए। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि कुछ सेफ्टी टिप्स, पर्सनल सेफ्टी टिप, बिजनेस सेफ्टी टिप्स, क्रेडिट कार्ड सेफ्टी टिप्स या कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप जा सकते हैं यू नो ऑन सोशल मीडिया ऑन ऑनलाइन थ्रू यू नो डॉक्यूमेंट सर्च रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आप शायद स्कैम से बच पाए। तो जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि ACCC की जो वेबसाइट है जो स्कैम वॉच चलाते हैं और उनके पास एक पब्लिकेशन है जिन्होंने बनाई है अबाउट स्कैम्स एंड इट इज नेम्ड एज लिटिल ब्लैक बुक ऑफ स्कैम्स इनटू 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस टू हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड एंड अवॉइड स्कैम। उसके साथ ही ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कैम्स आर अवेलेबल ऑन स्कैम वॉच वेबसाइट इंक्लूडिंग हाउ टू मेक अ रिपोर्ट एंड वेयर टू गेट हेल्प। सिमिलरली ACCC रेगुलरली एंगेजेस इन इंडिजिनियस आउटरीच प्रोग्राम्स एंड CALD कम्युनिटी प्रोग्राम जिसमें वो स्कैम वार्निंग्स देते हैं एंड देयर इज अ पेज फेसबुक पेज कॉल्ड योर राइट्स मॉब योर RIGHTS MOB फेसबुक पेज है जिसपे आप जाके देख सकते हैं इस वार्निंग्स के बारे में और आप उनका ट्विटर पेज भी फॉलो कर सकते हैं जो है @scamwatch_GOV ऑन ट्विटर एंड सब्सक्राइब टू स्कैम वॉच एंड गेट अलर्ट्स। और कुछ और इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन बैंकिंग टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सो दैट यू आर वेल अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट यू नो सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग वो ये है कि नेवर प्रोवाइड योर पर्सनल और सिक्योरिटी डिटेल्स। दिस इंक्लूड्स योर कस्टमर आईडी, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स, सिक्योरिटी कोड्स इन रिस्पॉन्स टू एनी ईमेल, SMS और यू नो एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम एनीवेयर। डू नॉट शेयर ऑल दीज डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स बैंक्स एंड authorities will not ask you till the time you call them up on their legitimate number or you know the number is legitimate. Similarly, regularly check your accounts and your pay list. If there is a suspicious transaction to nahi hua aapke bank account mein to aapke liye zaruri hai ki aap apne you know banking app pe jaye aur apni transaction list zarur dekhe time to time taki aapko pata chalta rahe ki koi scam to nahi ho raha hai. Similarly, secure your mailbox and properly dispose of sensitive documents. To agar aap use karte hain you know PO box for your documentation, so don't simply throw your bank documents, bill etc. in the bin. Unko acche se shred kare aur fir fekein. Keep your devices secure. Agar aap mobile phone use karte hain, laptops use karte hain, to antivirus patch zarur install karte rahe, update karte rahe apne softwares ko so that you are up to date with the recent scam. Be careful of what you share online and on social media. Jaise maine aapko bataya tha, ye bahut bahut important hai. Aajkal ke time mein social media is powerful resource where scammers are sitting and watching you every minute of the day. तो आप फोटोज डाल रहे हैं you know, आप फ्रेंड्स को टैग कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अपने स्कूल्स की you know, history trivia. You never know who's watching that. Please be cautious. And one of the important thing that you should do is if you are traveling for long duration, please advise your travel plans to your bank because it's a good idea. You can lock your bank account for the time you are outside, overseas or anywhere, and then that will actually help you in securing your bank account of any kind of scam that may happen. सिमिलरली अगर आप क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ। वो ये है कि नेवर राइट डाउन योर पिन यू नो बिकॉज पिन इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू विल यूज टू गेट एक्सेस टू योर बैंक अकाउंट। ब्रिंग अ बैकअप कार्ड व्हेन ट्रैवलिंग। इफ यू आर ट्रैवलिंग यू नो यू शुड हैव अ बैकअप कार्ड बिकॉज अगर आपने
यू नो ओरिजिनल कार्ड खो गया तो आपके पास बैकअप कार्ड होना चाहिए टू यूज योर बैंक अकाउंट. डिस्ट्रॉय एक्सपायर्ड और अनवांटेड कार्ड बाय कटिंग देम राइट थ्रू यू नो द सिग्नेचर पैनल इन द बैक एंड जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको कटना चाहिए. एंड नो वेयर योर कार्ड इज ऑल द टाइम्स. किसी को भी कार्ड ना दें कि ये अगर आप ट्रस्ट करते हैं किसी को कि आपने बैंक अकाउंट का आपने एटीएम कार्ड दिया जाइए पैसे निकाल के ले आइए और आप यू नो एटीएम कार्ड का पिन भी शेयर कर रहे हैं. That's the worst thing that you will do for some kind of comfort that you want to have in your life. Please don't do that. You will regret it later. Businesses ke liye ensure all your system and softwares are up to date. Keep your data safe. Keep updating your backups. Backups lete rahe. Educate your staff about your scams. Bahut important hai. Always verbally confirm any payment request or account changes that are delivered via email. Phone kare, baat kare aur fir confirm kare ki ye hua hai. And last but not the least, जो मैंने पहले भी बोला है आपको, बीवेयर ऑफ इम्पर्सोनेटर्स. क्रिमिनल्स ऑफ्टन लाइक टू पोज एज वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस टू एंटाइस यू इनटू फुलफिलिंग देयर रिक्वेस्ट. कॉमन इम्पर्सोनेशंस इंक्लूड एएसआईसी, द एटीओ, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी कंपनीज और यूटिलिटी कंपनीज. Use caution when receiving phone calls or emails claiming to be from a reputable organization and consider what they are asking you. So, for example, does this sound right? Would someone really ask me to do this? Banks will never ask you to download software and sign in to the banking. And if someone is pressuring you to gain access to your account, simply hang up and call the bank for assistance.

आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी जो आपको या आपके द्वारा किसी को भी स्कैम से बचाने में काम आएगी। प्लीज कोशिश कीजिए कि जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आप अपनी कम्युनिटी, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो गैजेट्स नए यूज करना शुरू हुए हैं, हम हैविली डिपेंडेंट हो गए हैं डिवाइसेस पे, और पेरेंट्स या ओल्ड एज पीपल जो ज्यादा डिवाइसेस का यूज नहीं करते थे अब वो भी फोन का यूज कर रहे हैं फॉर इंटरनेट एक्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है टू बी यू नो स्कैम्ड बाय दीज पीपल। तो प्लीज बी अवेयर एंड प्लीज ट्राई टू मेक देम अवेयर एज वेल एंड स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। इन्फॉर्मेशन और खुशी बांटने से बढ़ती है, तो प्लीज बेझिझक बांटिए और बढ़ाइए। और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते सेम टाइम सेम जगह, दैट इज 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। मैं हूं आपका अपना देसी आरजे विकास। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।